गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सब ने इतनी हाजरी प्रवान करनी जी। करते दी सिफत सलाह करदे आ, कीर्तन करदे आ, होईयां बेअंत गलतियां दी खिमा बख्श देनी जी। आओ जी हुण साडे अति सत्कार योग ज्ञानी दलजीत सिंह जी, जो बड़े विस्तार नाल बड़ी भावना नाल रोज़ाना आप जी नूं लड़ीवार गुर इतिहास सरवण करवाउंदे हन। सो उहनां पासों लड़ीवार गुर इतिहास ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सुनती पनीत कहती पवित सतगुर रहिया पर पूरी बिनवंत नानक गुर चरण लागी वाजी अनहद तूरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार दे दे मंगै से सगुण।

सब कोई आख्या अपना जिस नागी दुन गलिए की दया बो अपना आपे लेखा संडियां जरण नाई ऐत जग तां कायत गार बहंडिये मदा किसन आखिए पर अखर ए वो बुदिये मूर्ख नाल नल दिए नाल नल दिए नाल

तिन बुझी सब को जिन सतगुर प्यारा सेवा तिना सुख सद हो जिन नानक सतगुर भेट तिना मिलया हर सोई